हम पर मैं हूँ आपका साथी अवि और लेकर आया हूँ सैटरडे ब्रेकफास्ट शो। ऐसे में आपका साथ दे रहा हूँ और आपको पता होगा कि जब पहली बार फ्यूल का मसला सामने आया था तो काफ़ी बातें हुई थी, गवर्नमेंट द्वारा बात हुई थी नेशनल फ्यूल प्लान के बारे में। तो कुछ 5 वीक्स हो चुके हैं जबकि फाइनेंस मिनिस्टर निकोला विलिस ने कहा था कि ये इंडस्ट्रीज़ के हेड्स के साथ में कंसल्ट करेंगी और एक फ्यूल प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करेगी, यानी कि व्हेन इट कम्स टू क्रंच कौन कौन से लोगों को किन किन प्रोफेशंस में इंडस्ट्रीज में फ्यूल प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अभी एक चेयरपर्सन है ऑफ वाइस रिस्पॉन्स सोसाइटी जो इन्होंने इनका नाम है नेथन सुरेंद्रन और इन्होंने कहा है कि 5 वीक्स हो चुके हैं लेकिन अभी तक जो प्रायोरिटी लिस्ट थी जो नेशनल फ्यूल प्लान के अनुसार फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया था, ये अभी तक इसका ऐलान नहीं किया गया है, इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो इनका ये रिक्वेस्ट है, ये कहते हैं कि अभी के अभी हमको जो फेज 3 का जो प्लान है ये बताया गया था कि प्रायोरिटी लिस्ट रहेगी, तो ये प्लान हमें देखना है। तो ये सभी कुछ बातें हो रही है। आप किस एरिया में हो, आपको पता है कि आज का जो फ्यूल रेट है आपके एरिया में कितने में जा रहा है, यानी कि पर लीटर कितना भाव आज चल रहा है, सबसे चीपेस्ट चलो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस एरिया में किस भाव पर रेट है या किस रेट पर फ्यूल चल रही है। अगर जो आपके पास में अभी आपने रिफ्यूल कराया है तो ज़रूर टेक्स्ट कीजिएगा 555 99 पर ताकि पता चले कौन से सबब में प्राइजेस किस तरह से है।

0: बेटा मेरा फोन किधर है?
1: अभी बताया तो फ्लाइट चप्पल कंफर्म है।
2: इस मदर्स डे क्या आप जानते हैं अपनी मम्मी का रियल रिएक्शन? फ्रॉम ब्रोकन फ्लावर्स टू लौकी की सब्जी।

0: breakfast on Hum.
1: Yo.
2: You're listening to Avineet.
3: Good morning. मैं हूँ अभी आपके साथ में और आपको बता दें कि जो सुपर रग्बी के अंतर्गत खेल हुए कल रात को हरिकन्स और क्रुसेडर्स के बीच में, इसमें इट वाज अ वेरी क्लोजली कॉन्टेस्टेड अफेयर, जबकि एक टीम ट्राई बनाती थी और जवाब में दूसरी टीम भी तुरंत ट्राई बना देती. अ वेरी एक्साइटिंग मैच टू वॉच, जबकि हरिकन्स और क्रुसेडर्स के बीच में 80th मिनट तक ऐसा ही चला और फाइनल्स को हरिकन्स के फेवर में, जहां पर 38-31 से इनकी जीत हुई. इसके साथ में एक और एक खेल कल रात को फोर्स और साथ में वोराटास के बीच में हुई. फोर्स की जीत 20-17 से वोराटास से हुई. आज शाम 4 पर फिजियन रुआ टेक्स ऑन हाईलैंडर्स. जी हाँ, 4 PM ये मैच रहने वाली है. अगर जो आप भी इसे देखना चाहते हैं तो 4 PM इसे ज़रूर कैच कर सकते. मैं इसे बिल्कुल देखूंगा. आई डोंट वॉन्ट टू मिस दिस आउट. और 4 बजे, जबकि 12 बजे यहां से मैं निकलूंगा, तो 4 बजे जरूर ये मैच पे देखूंगा.

0: असली ब्लॉकबस्टर
1: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: That's right, हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पर, मैं हूं अभी आपके साथ में सैटरडे ब्रेकफास्ट शो के साथ में। थोड़ी देर में आपको बताएंगे हेल्थी ब्रेकफास्ट के बारे में। कीप हमिंग।

0: हम पर आपको याद दिला दे, क्या आज ही के दिन आपकी भी जोड़ी बनी थी, तो आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो आपको याद दिलाते हुए अपने जो मैसेजेस है आप हमारे पास में 5599 पर टेक्स्ट कर सकते हैं। इस गीत को जब मैं सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दिनों से कहीं शादी पर नहीं गए। ऐसा कभी कभी लगता है ना कि कहीं वेडिंग पर आपको इन्वाइट नहीं मिला और जो आपके ब्यूटीफुल आउटफिट्स है ये अभी धरे हुए हैं और इन्हें आपने बहुत दिनों से पहना नहीं है। तो शायद वेडिंग का जो सीज़न है जल्द से जल्द आए और जितने भी इन्वाइट्स है एक बार फिर ये बाहर निकले और हम तक पहुँचे। इसके साथ साथ एक खुशी का माहौल भी रहता है जब भी वेडिंग होते हैं और होती है, जितने फैमिली मेम्बर्स है दूर से आते हैं और एक दूसरे के साथ में होकर इट्स अ ब्यूटीफुल एम्बियंस और ये सभी कुछ रहता है फॉर अ वेडिंग ओकेजन ऑफ ब्यूटीफुल वेडिंग। तो ये सभी कुछ वेडिंग सॉन्ग आप तक सुनवा रहे थे, वाह वाह राम जी। इसके साथ में टेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर देखते हैं तो एक बड़ा प्यारा मैसेज आया हमारे पास में। गुड मॉर्निंग अभी, वेरी नाइस एंड एनर्जेटिक है आपका प्रोग्राम, क्वीन ने आपने लिखा है। थैंक यू सो मच, आप हमेशा हमारा साथ देती है, इसी तरह से अपना जो मैसेजेस है हमारे पास में भेजते रहिए ताकि हम भी आपको यहाँ से याद फरमाते हुए चले। अभी तक आपने अपना जो मैसेज है हमारे पास में ड्रॉप नहीं किया है तो 5599 पर अब भी मौका है, प्यारे से मैसेज एक हमारे लिए भेज दीजिए, अपने उंगलियों को थोड़ा सा तकलीफ दीजिए।
1: टोस्ट कॉफी और हम का एनर्जी सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
2: You get money, get back. New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Turtle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
3: If you're out there working hard, it's time to put down the tools and pick up a pie. Just head into your nearest Zed and show your Zed Business fuel card to get $1 off any pie. Now that's worth going to work for. Ends 25 May while stocks last.
4: Bunnings has great value nailed across the store.
5: Enrich with Nature 120mm Moth Orchid, only $34.80. When you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
6: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: हम सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
0: जी हाँ, ये है सरडे ब्रेकफास्ट और हम, मैं हूँ अभी आपके साथ में और हमने कहा था आपको कुछ अमेजिंग ब्रेकफास्ट कॉम्बिनेशन बताएंगे जिन्हें सपोर्ट करते हैं हार्ट फाउंडेशन ताकि आप हेल्थी रहे, हेल एंड हार्टी रहे। तो इसके साथ में आप अगर जो ब्रेकफास्ट में होल ग्रेन टोस्ट लेते हैं, इसके साथ में एग्स लेते हैं और फिर लो फैट मिल्क लेते हैं और साथ में फ्रूट्स लेते हैं तो ये सभी कुछ आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है, क्योंकि हार्ट फाउंडेशन का कहना है होल ग्रेन में काफ़ी ऐसे बेनिफिट्स है जैसे और इनके लिए आप होल ग्रेन ब्रेड साथ में व्हीट बिस्किट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हाई इन फाइबर है। इसके साथ में आपको फुल रखेगी और आपके टमिस को बिल्कुल हेल्थी रखेगी और गट को भी हेल्थी रखेगी। इसके साथ में लो शुगर का उपयोग करें, यूज़ एस लेस एस पॉसिबल। इसके साथ में ये भी बताया गया है अक्सर जब आप कुछ प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं अपने किचन में, अपने पेंट्रीज में, तो याद रहे कुछ कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें हिडन शुगर भी रहते हैं, हिडन सोल्ट भी रहते हैं, तो इसके लिए आप बिल्कुल सतर्क रहे। इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन जो लेबल्स पे है इसको पढ़ते रहें, क्योंकि एज एन एग्जांपल पीनट बटर हुआ, साथ में बेक्ड बीन्स हुए, इनमें हिडन सोल्ट अक्सर रहते हैं, तो सोल्ट की मात्रा कितनी है इसका भी आपको ध्यान रखना है।

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: Your city, your music.
2: Hey, this is a cool neighborhood. Stop playing bajans.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
0: Hum.
2: Thanks. Love you.
3: 9 मिनट बाकी है 9 बजने में और ऐसे में 9 बजे से आपके लिए शुरू हो जाएगी मस्ती मीठा प्रोग्राम को एक अलग मोड़ देंगे एक नया रुख देंगे जहां पर कुछ फन कॉमेडी एलिमेंट्स आपके लिए लेकर आएंगे ये सभी कुछ रहेगा आपके साथ में लेकिन इस आवा का जो लास्ट गीत है ये उदित नारायण साथ में अलका याग्निक की आवाज़ों में है

0: Hum. Masti Meter on Hum.
1: Yo, main hu chhota sa chhora.
0: You're listening to Avineet.
2: That's right, मैं हूँ अवि आपके साथ में. नौ बज चुके हैं और ऐसे में शुरू हो चुका है मस्ती मीटा का जो प्रोग्राम है ये आपके लिए. लेकिन उससे पहले कुछ लोग हमारा फेसबुक पर साथ दे रहे हैं, आपको भी याद फरमाते चलते हैं. हम 104.2 FM के फेसबुक पेज पर संगीता है, साथ में सुभाग है और उसके साथ में जरीन है, उसके साथ में प्रभा है और आहुति है. आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. ऐसे ही हमारा साथ देते रहिएगा. जबकि मस्ती मीटा का प्रोग्राम है तो हंसी के बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन. ये आप हमारे साथ में, मैं जानता हूँ आप बिल्कुल अग्री करेंगे. एक स्ट्रेसफुल वीक के बाद में, जहाँ पर काफ़ी भाग दौड़ के बाद में थकान होती है और फिर उसके बाद में 5 दिनों की मेहनत के बाद में आता है 2 दिनों का वीकेंड, ऐसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना खुद का ख्याल रखें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें. और क्योंकि हंसने का एक फ़ायदा ये भी बताया गया है कि ये कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस को रिलीफ देता है, उसके साथ में आपको आपके मूड को बूस्ट करता है. ये सभी कुछ हंसी के कुछ फ़ायदे हैं. लेकिन एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे पेशेंट हैं जिनके हंसी के बारे में भाई कुछ और ही कहना है. तो चलो इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनसे सुनते हैं ये हंसी को लेकर क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं. चलिए एक नज़र इनको सुनते हैं.
3: तुम रोज हंसती हो, आज हंस रही हो? रोज रोज शाम को इसी टाइम पे. जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे.
2: हाँ, तो ये इनका कहना, इनका अलग ही कहना है, अलग अंदाज में कहते हैं. और जब भी ये हंसी की बातें करते हैं, कॉमेडी करते हैं, तो बड़ी ही क्लीन कॉमेडी इनकी रहती है, साफ सुथरी, एक टोटल फैमिली एंटरटेनर. और कभी डबल मीनिंग वाले जोक्स नहीं, लेकिन जो कुछ भी करते हैं एक अच्छे तरीके से करते हैं. अब तो ये नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन क्या आपको पता है कि ये किसकी आवाज़ थी, कौन हमें ये बता रहा था हंसी के बारे में? एक बार फिर आपको सुनवाते हैं, एक बार फिर इसे सुनिए और 5599 पर हमारे पास में मैसेज कीजिए कि ये किसकी आवाज है भाई और ये क्या बोल रहे हैं हंसी के बारे में.
3: तुम रोज हंसती हो, आज हंस रही हो? रोज रोज शाम को इसी टाइम पे. जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे.
2: हाँ, तो जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे तो फिर पूछो कभी आप फिर हंसे. तो ये मेरा नहीं, ये इस कलाकार का कहना है. और आपको सिर्फ यही बताना है कि भाई किसकी आवाज़ थी जो आपको सुनवा रहे थे. कॉमेडी की दुनिया में एक अलग इनका छाप था, ये छोड़ गए हैं अपने छाप को. और देखे कितने लोगों को, हमारे लिसनर्स को पता है कि आपने अभी अभी किसकी आवाज़ को सुना है. 5599 पर हमारे पास में मैसेज कीजिएगा. मस्ती मीठा बिल्कुल जारी है.

0: You're listening to Avineet.
1: तुम रोज हंसती हो आज हंस रही हो रोज रोज शाम को इसी टाइम पे जो हंसे उसका घर बसे जो हंसे उसका घर बसे और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे
2: इसके पीछे काफ़ी जगह पर लड़ाई हो सकती है अगर जो एक तरीके से सोचा जाए जितने हस्बैंड वाइफ आप साथ में ये तो मजाक की बात होती है ना हम चाहते हैं कि लोग एंजॉय करें और यहाँ तक कि ये बजाने के लिए शायद मुझ पर भी कहीं ना कहीं से मुसीबत आन पड़े लेकिन अगर जो टेक्स्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखें तो प्रवीणा आपने सही पहचाना और साथ में शलेश आपका भी जवाब आया है आपने सही पहचाना तरुण शर्मा आपने भी सही पहचाना आपने कहा है कि ये बहुत ही लेजेंडरी कॉमेडियन थे और इसके साथ में अफजल आपका भी जवाब साथ में आया है और अभी आप अभी सामी आपका भी जवाब आया है थैंक यू सो मच आपने भी सही पहचाना इसके साथ में एश वेलिंगटन से आप सुन रहे हैं वेलकम टू द शो आपका खास स्वागत करते हैं आपने भी सही जवाब लिख कर भेजा हमारे साथ में और 23159 आपने लिखा कि ये वाइफ और हस्बैंड के रिलेशनशिप पर बेस्ड है जी हाँ बिल्कुल सही इसके साथ में 1862 आपने भी सही पहचाना ये कोई और कलाकार नहीं राजू श्रीवास्तव ही थे और राजू श्रीवास्तव जिनकी पैदाइशी हुई थी 25 December 1963 में और अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे ऑन द 21st of September 2022 एज 58 और इनके बारे में बताया जाता है कि ये बोर्न हुए थे एज सत्यप्रकाश श्रीवास्तव और फिर आगे चलकर इनको प्रोफेशनली जाना गया एज राजू श्रीवास्तव और इनका एक करेक्टर हुआ करता था गजोद्धर अगर जो आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको और सारे और हंसाने वाले जो चुटकुले वीडियोस हैं ये आपको मिलेंगे इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है बाजीगर हुई या फिर बॉम्बे टू गोवा आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसे फिल्मों में ये नज़र आए थे और साथ में ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ये ओरिजिनली थे कानपुर सिटी फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूपी और इन्होंने ज़्यादातर के मिमिक एली डेज में अमिताभ बच्चन को ही किया था तो ये कुछ आपको बता रहे थे राजू श्रीवास्तव के बारे में और एक ऐसे कलाकार आप अगर जो अच्छी तरीके से देखेंगे जो कला होती है कॉमेडी की ये अक्सर वही लोग कर पाते हैं जो कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करके स्ट्रगल करके अपने लाइफ में और आगे चल कर इनको हंस कर बता सकते हैं शायद इसीलिए जितने भी जोक्स हैं ये मेरिज पर ही बने हुए हैं

0: हम पर रवि का साथ है और आपको लगे हाथों कम्युनिटी न्यूज में बता दे, श्री वेंकटेश्वरा देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट ये लेकर आ रहे हैं आपके लिए भोजन मेला फूड कार्निवल जो रहेगा संडे मई 17 को 11 बजे दिन से लेकर 4 बजे शाम तक। आपको सिर्फ जाना होगा 378 आरा रिमू रोड रामा रामा साउथ ओकलैंड, जहाँ पर लक्ष्य है कि लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए जाए और आपके लिए फीचर्स एंड अट्रैक्शन में फ्री एंट्री और साथ में फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स भी सेव किए जाएंगे, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर। इसके साथ में ज्वेलरी क्लोथिंग एंड अदर स्टॉल्स रहेंगे और हिना आर्टिस्ट भी यहां पर रहेंगे आपके हाथों को सजाने के लिए और इसके साथ में फेस पेंटिंग बच्चों के लिए और बाउंसी कासल का भी प्रबंध किया जाएगा। तो याद रहे आपको सिर्फ जाना है 378 आरा रिमू रोड रामा रामा साउथ ओकलैंड जो कि रहेगा संडे 17 मई को और सुबह 11 बजे से आपको जा सकते हैं यहां पर। और स्पॉन्सरशिप और डिटेल्स के लिए आप शिवानी को 0218700012 साथ में शांति रवि को 0212946394 पर कॉल कर सकते हैं।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Budget gaane.
3: 80s के retro gaane.

0: कॉफी और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: यो मैं हूँ सुधा सा छोरा
0: You're listening to Avineet.
3: That's right, मैं हूँ अवि आपके साथ में आपका साथ दे रहा हूँ और ये है मस्ती मीठा 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा. अगला क्लिप सुनाने से पहले आप शायद इससे कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे. यूं कहें अगर जो कोई इंसिडेंट घर पर हो या आपके साथ में हो और लोग अक्सर जो कंसर्न्ड होते हैं विच इज़ अ गुड थिंग कि लोग आपसे आपके मुश्किलों से कंसर्न्ड होते हैं और इसीलिए आपसे पूछते हैं कि आपके साथ में ये इंसिडेंट कैसे हुआ और कितने बजे घटा या फिर हाउ डिड इट हैपन टू बी और डिटेल्स चाहते हैं तो आप पहले पेशेंट को बता ही देते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ इतने बजे ये हुआ है और यू नो दुख के साथ में आप उनको बताते हैं. अगर जो आप बीमार हुए हैं या फिर किसी तरह से और कोई दुर्घटना हुई है तो आप उसके बारे में बताते हैं. लेकिन बारी बारी से लोग अलग अलग समय पर वही सवाल आपसे पूछते रहते हैं और आप उसी तरह से जवाब देते रहते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं जब आप थक जाते हैं तो फिर एंड में क्या जवाब आप दोगे. तो ऐसा ही कुछ हुआ है शायद राजू श्रीवास्तव के साथ में इस क्लिप में. तो चलो आपको वो भी सुनवाते हैं कि एंड में इनका रिएक्शन क्या था.
4: अच्छा ये बताइए जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा.
5: नहीं नहीं एकदम से नहीं फटा. एकदम से नहीं फटा. बम पहले हमारे बाजू में आए फिर मुझे देख के थोड़ा सा शर्माए फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे नज़दीक आए फिर नज़दीक आके बोले मैं बम हूँ आप बुरा ना माने तो फट लूँ. मैंने कहा जब आ गए हो तो फट लो. मेरी ओर देख के बम बोले फुचुक.
3: हाँ तो ये सभी कुछ राजू श्रीवास्तव के साथ में और आप मज़ा ले रहे हैं और बारी बारी से कुछ और भी सुनाने की कोशिश करेंगे और मस्ती मीठा है ये. हम चाहते हैं कि आप मुस्कुराते रहे हंसते रहे आपके चेहरे पर स्माइल बनी रहे आज के रोज़. यही हमारी कोशिश रहती है.

0: मस्ती जरूरी है मस्ती मीटर के साथ।
1: That's right, लाइफ में मस्ती जरूरी है और मस्ती के साथ में रोमांस भी जरूरी है, क्योंकि अगला जो नंबर आपको सुनाने जा रहे हैं ये अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में, और इन दिनों मैं इस गाने को खासकर ज़्यादा बार सुन रहा हूँ और इट्स अ ब्यूटीफुल नंबर, आप भी इसे पसंद करेंगे। 104.2 FM साथ में रो वाइब पर आप मुझे सुन रहे हैं, ये है सरडे ब्रेकफास्ट शो।

ऑलराइट, मस्ती मीता में मैं हूँ अभी आपके साथ में, और आपको बता दूं कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल है हमारे पास जो आपसे पूछना चाहते हैं, जबकि मस्ती मीठा है तो इसी तरह का सवाल भी है हमारे पास में। और यही सवाल है कि एक आदमी ने प्लेन से छलांग लगाई, ही जम्प्ड आउट ऑफ अ प्लेन, और उसे कुछ खास नहीं हुआ, सिर्फ मामूली चोट पहुँची और कुछ ज़्यादा नहीं हुआ उसे, वो बच गया। इसका रीज़न क्या हो सकता है? 5599 पर हमारे पास में टेक्स्ट कीजिए। एक आदमी ने प्लेन से छलांग लगाई और वो कूद गया प्लेन से बाहर, लेकिन उसे कुछ खास नहीं हुआ, सिर्फ मामूली चोटें पहुंची। 5599 पर हमारे पास में टेक्स्ट कीजिए। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ?

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: जी ये सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम, मैं हूँ अभी आपके साथ में। और तोता भी उड़ा दिए, रॉकेट भी उड़ा दिए। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था कि एक आदमी ने एयरक्राफ्ट से, एयरप्लेन से जंप लगाई बाहर, लेकिन उसे कुछ खास नहीं हुआ, उसे सिर्फ मामूली चोट पहुंची और वो बच गया, इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो 84307 आपका जो जवाब है, आपने लिखा है कि क्या वो एयर इंडिया सीट 11 पर बैठा था? ओह 11, अच्छा वो आपका रेफरेंस पॉइंट है, अच्छा चलो ठीक है। और इसके साथ में 8037 आपका भी जवाब आया है। चलो और भी लोगों को मौका देते हैं, आपको क्या लगता है? मस्ती मीठा का प्रोग्राम है। एक आदमी ने एयरक्राफ्ट से बाहर जंप लगाया लेकिन उसे सिर्फ मामूली चोट ही पहुंची, इसका रीज़न क्या हो सकता है? ये जवाब लिखकर भेजिए 5599 पर अपने नाम के साथ में। और इसके बाद में देखेंगे किन किन लोगों का जवाब पहुंचा है और क्या लोगों का टेक है इस पर।

0: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में सैटरडे ब्रेकफास्ट शो का ये सफर है और जबकि 16 मिनट बाकी है 10 बजने में, 10 पर आपके लिए जुगाड़ जंक्शन भी रहेगा। चलो एक और कम्युनिटी न्यूज में आपको बता दें कि फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड इन एसोसिएशन विद एसेप प्रॉपर्टी फाइनेंस स्पेशलिस्ट के साथ में मिलकर हमारे लिए लेकर आ रहे हैं 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे। एक ऐसी इवनिंग, एक ऐसी शाम जहां पर लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनको याद किया जाएगा। ये सभी कुछ होगा सैटरडे 16th मई को एट मलाय लोआ कम्युनिटी सेंटर 16 वाकोरी प्लेस मेंगरी ओकलैंड में। याद रहे 4:30 PM से ये फंक्शन जो है शुरू होगी। डोर्स ओपन रहेंगे 4 बजे से। यहाँ पर नेटवर्किंग करने का मौका भी रहेगा, टी एंड स्नैक्स भी प्रोवाइडेड रहेंगे। इसके साथ में आपके लिए फ्री एंट्री है ये सभी कुछ, और उसके अलावा लाइव सिंगिंग और ढेर सारे एंटरटेनमेंट आपके लिए रहेंगे। अगर जो और जानकारी आपको चाहिए तो ईमेल करिए fijigirmitnz@gmail.com पर। याद रहे fijigirmitnz@gmail.com पर आप ईमेल कर सकते हैं। और इसके साथ में जबकि हमने सवाल किया था कि एक व्यक्ति ने एयरक्राफ्ट से बाहर जंप लगाया, छलांग लगाई, लेकिन बच गया, उसे कुछ खास नहीं हुआ, सिर्फ मामूली चोट पहुंची है, तो मुकेश ने भी अपना जवाब भेजा है 5599 पर। आप भी अपना जवाब भेजिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो बच गया, क्या रीज़न था कि एयरक्राफ्ट से कूदने के बाद भी ही सर्वाइव्ड, सिर्फ मामूली चोट पहुंची। 5599 पर अपना जवाब भेजिए अपने नाम के साथ में।
1: लाइफ में थोड़ी मस्ती जरूरी है, मस्ती मीटर के साथ।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
3: Fly direct from Auckland to the Gold Coast with Qantas from June 16. From sun-soaked beaches and luxury retreats to world-class waterfront dining and lush hinterland escapes, find that holiday feeling in the Gold Coast. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment, Wi-Fi and 30 kilos of checked baggage included when you fly with Qantas. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Terms and conditions apply. Schedule subject to change.
1: Bollywood ka asli blockbuster.
4: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
1: Playing Bollywood's biggest hits. Ye hai Masti Meter.
4: Aa gaya.
1: You're listening to Avineet.
0: जी हाँ, मैं हूँ अभी आपका साथ दे रहा हूँ। और जवाब अगर जो देखें तो हमारे पास में अभी आपका भी जवाब आया है, साथ में मुकेश आपने जवाब भेजा था, सही जवाब आपका भी था। इसके अलावा 8037 आपने भी सही जवाब दिया था दोस्त। तरुण शर्मा आपका जवाब हमको मिल चुका है। और इसके साथ साथ राहुल और ऋतिक आपका भी मैसेज आया है, आपने सही अनुमान लगाया, सही अंदाज़ा लगाया। जो एयरक्राफ्ट थी ये रनवे पर ग्राउंडेड थी, खड़ी थी और स्टेशनरी थी, इसीलिए उस व्यक्ति को ज़्यादा चोट नहीं पहुंची, बच गया मामूली चोट लगकर और काम निकल गया। लेकिन आपके लिए स्टेज लगे हैं, उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। इवन व्हेन गोइंग अप एंड डाउन स्टेज ज़्यादा ख्याल रखिएगा ताकि आपको किसी तरह से कोई चोट चपेट ना लगे। लेकिन ये मस्ती मीटर है और अभी 10 बजे से आपके लिए शुरू हो जाएगा जो जुगाड़ जंक्शन है, जहाँ पर कुछ ना कुछ नए तरकीब आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। तो चलो, आप लोगों ने जवाब दिया, अपने अपने मैसेजेस हमारे पास में भेजे, तो आपको अगले इस गीत में शामिल करते हैं।

0: और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
1: आ, आ,

0: AG the Gangster.
1: Masti Meter on Hum.
2: इस वीक के लिए मस्ती मीटा को यही रैप अप करते हैं आपके लिए, और अगले वीक एक बार फिर इसी समय पर लेकर आ जाएंगे। 10 बजे से रहेगी

0: Logic Finance Limited, changing lives with logic.
1: Good morning, I'm Lucy Walker with the latest at 10. The US president is expressing doubts about Iran's ability to make peace. Iran sent its latest proposal to end the war, but Donald Trump says he's not satisfied with it. He's cast doubt on Iran's ability to reach a deal.
2: It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up.
1: Meanwhile, Donald Trump is increasing tariffs charged on cars and trucks imported from the European Union. The 25% tariff is a sharp escalation of trade tensions with Brussels. He's accused the EU of not complying with their trade deal. Contractors are working on removing a crashed truck blocking a central Otago route. It's cutting off the Tarras Cromwell Road near Lindis River Bridge. Detours are in place. Actress Emily Blunt is being slammed on social media for giving money advice to women.
3: Do you have any tips for girls who are hating their jobs right now?
4: Quit. No. Look, I think just find something that you deeply want to do. Even if you're earning no money, as long as you love it, you'll be happy.
1: Fans have called out Blunt, who's worth an estimated $135 million, saying she's out of touch. To sport and rugby with Shift 4. Fihi Finiunga Nufo is closing in on the all-time Super Rugby record for most tries in a season. The Hurricanes flyer dotted down for his 15th try in their 38-31 win against the Crusaders in Wellington. And to motorsport with Mag and Turbo's 80,000k tyre warranty. New Zealand's Liam Lawson will start 17th in Formula One's Miami Sprint Race after being eliminated in the opening stage of qualifying.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Your city, your music.
5: Hey! This is a cool neighborhood! Stop playing bhajans!
0: Playing Bollywood's biggest hits. Hum.
5: Thanks! Love you!
0: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
6: Saturday breakfast on Hum.
0: Breakfast में हम आए हैं जुगाड़ जंक्शन पर
7: यो मैं हूँ सूटा सा छोरा
0: You're listening to अविनीत
8: That's right, मैं हूं अभी आपके साथ में और 10 बज चुके हैं और ऐसे में अब शुरू हो चुका है जुगाड़ जंक्शन जहां पर कुछ ना कुछ नए तरकीब आपको बताते रहते हैं कि कैसे आप अच्छे तरीके से अपने कामों को ठीक कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसे हिंट्स देते हैं लाइफ हैक्स आपके साथ में शेयर करते हैं जहाँ पर कम दामों में आप अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं ये सभी कुछ रहता है आपके साथ में टिल 11 और 11 पर आपके लिए लेकर आएंगे देसी बिज शाउट आउट जहां पर जितने भी होम बेस्ड बिजनेसेस है आपके पास में मौका रहेगा अपने बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए लेकिन अभी के लिए हमारा जो प्रोग्राम है सुन रहे हैं ब्रिस्बन क्वींसलैंड से मुकेश साथ में उनकी पत्नी है सुजन और बेटे हैं रेनल आप सभी को कार्यक्रम में शामिल करते हैं आप यहाँ से गए हैं उधर लेकिन हमको साथ में लेकर गए हैं क्योंकि आप रोवा पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में एंड यू आर लिसनिंग इन फ्रॉम ब्रिस्बन आपका खास स्वागत करते हैं ऐसे ही हमारा साथ देते रहिएगा इस घंटे की शुरुआत करते हैं बादशाह के साथ में और इसके बाद में आपके साथ में शेयर करेंगे एक ऐसा हैक जिसे मैंने कल ही इस्तेमाल किया है एक

आप सुन रहे हैं हम पर, मैं हूं आपका साथी अभी, और यह है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो, और आ चुके हैं हम जुगाड़ जंक्शन पर। आपको शायद याद होगा कि पिछले कुछ वीक्स में मैंने आपको बताया था टू गुड टू गो ऐप के बारे में। जी हां, टू गुड टू गो ऐप, और इसका मैंने इस्तेमाल कल ही किया है। ये एक ऐसा ऐप है जहाँ पर फूड वेस्टेज को बचाने की कोशिश की जाती है, यानी कि फूड वेस्टेज को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। और ऐसा करते हुए जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, साथ में फास्ट फूड जॉइंट्स हैं, ये साइंड अप है टू गुड टू गो के साथ में। तो अगर जो आप इस ऐप पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे, और आपको ऐसे ऐसे वैल्यू डील्स मिलेंगे जहाँ पर ये फूड बिल्कुल फ्रेश ही होता है, लेकिन बजाय क्लोजिंग से पहले इसको डिस्पोज करें, ये रिड्यूस दामों में आपको मिल सकता है। तो कल मैं ओमिस्टन में था और मुझे शाम के लिए, रात के लिए अपना जो सोर आउट करना था खाना, इसके लिए मैंने देखा कि सुशी जो नॉर्मली इसका डील था, लगभग नॉर्मल प्राइस था अराउंड $15 to $20, ये कल मुझे इस ऐप के साथ में मुझे मिला $4 में, और ये बिल्कुल नॉर्मल सेव था एंड इट वाज एस फ्रेश। और जब मैं गया वहाँ पर, बातें हुई उनसे, तो इन्होंने कहा कि इनका मेन मोटिव यही है कि जो एक्स्ट्रा फूड होते हैं ये बजाय बिगने के, ये कहीं ना कहीं कोई इसे खरीद कर लेकर जाए और इसको इस्तेमाल करे। तो दिन भर इस ऐप पर काफ़ी जो स्पेशल प्राइजेस होते हैं ये रहते हैं, सरप्राइज बैग्स रहते हैं। आप चेकआउट कीजिए इस ऐप को, टू गुड टू गो इसका नाम है। खास करके जो लोग सिंगल है और आपको शायद शाम को, रात को खाने के लिए प्रॉब्लम होती है, तो ये एक अच्छा सुनहरा मौका है आपके लिए जहाँ पर आपको अच्छे खाने आपको मिल सकते हैं। अभी के लिए जब मैं इस ऐप पर हूँ तो मैं देख रहा हूँ एक अच्छा खासा फूड रैप है। ये इसका जो नॉर्मल प्राइस दिया गया था वॉज $25, लेकिन अभी जब मैं देख रहा हूँ तो इसको इस ऐप पे एडवर्टाइज़ किया गया है अराउंड $9। तो ये कहीं ना कहीं $16 की जो बचत है ये हो रही है, एंड इट लुक्स लाइक अ गुड सेव। और कल का भी जो सेव था मैंने ट्राई किया था, इट वॉज़ अ गुड पोर्शन और बिल्कुल सही फ्रेश था। तो आप भी इस ऐप को ट्राई कीजिए, टू गुड टू गो, अगर जो आप चाहते हैं कहीं ना कहीं आपको डील्स मिलती रहे, तो ये एक ऐप है जहाँ पर ये आपको मिल सकता है। काफ़ी एरियाज़ में ये अवेलेबल है, आप अगर जो ओकलैंड में है आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी सबर्ब्स में ये अवेलेबल है। तो एक बार फिर से, टू गुड टू गो ये ऐप का नाम है।

0: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
1: Macca's weekly deals are back. That means more of your favourites for less every week. Jump on the Macca's app and check out this week's offer. Macca's weekly deals. Only on the app. T's and C's apply. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Joe's Supermart uses fibre for their payment systems, while staff secretly use fibre to share funny videos like the one Perry uploaded of his dog skateboarding down a street that happens to have an ad from Chorus which says, New Zealand runs on fibre.
3: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
4: Indelible Homes, your building expert.
5: Reliance Ventilation System.
6: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
5: Moisture और ventilation का problem लगता है.
6: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
5: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
7: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
8: Playing Bollywood's biggest hits.
9: Saturday breakfast me. Hum aaye hain Jugaad Junction par.
10: Hello Auckland, main hu aapka apna Javed Ali. This is my first time to Auckland. Aur main aa raha hu 8 Mai ko Victory Convention Center mein. Jahan hum sab yaad karenge Rafi sahab ke golden songs. Aur saath hi saath sunenge
11: जी हाँ, जावेद अली आ रहे हैं ओकलैंड में अपना शो करने के लिए विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर. फ्राइडे 8 ऑफ मई को ये रहेंगे लाइव, जबकि ये लेकर आ रहे हैं रफ़ी और मैं एक ऐसे टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफ़ी जिन्हें जावेद अली अपने अंदाज में पेश करेंगे. इनको ला रहे हैं स्टार अलायंस इंटरटेनमेंट और साथ में प्राउडली प्रेजेंटेड बाय पैसिफिक इलेक्ट्रिकल सर्विसेज. तो याद रहे, जावेद अली एक ऐसे फनकार जो बिल्कुल उम्दा गाते हैं, एक अच्छे सिंगर है, क्वालिटी सिंगर है, और इनके आवाज़ में जब ये गानों को आप सुनोगे ना तो इनके आवाज़ में एक ऐसी जादू है, एक ऐसी कशिश है जिसे आप बिल्कुल इंजॉय करोगे. फ्राइडे 8 मई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में टिकट्स आर जस्ट फ्रॉम $59. अगर जो अभी तक आपने टिकट्स नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट .com पर जाकर. तो याद रहे, अगर जो आप मोहम्मद रफ़ी के फ़ैन हैं, पुराने नगमों के या फिर अभी के जावेद अली के खुद के गाए हुए गानों के आप फ़ैन हैं, तो ये सही मौका आपके लिए रहेगा. फ्राइडे 8 मई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में आप जाकर इन्हें देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं. इट विल बी अ मैजिकल कॉन्सर्ट. और स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट .com पर आप अपने टिकट जो है ये ले सकते हैं. और मूविंग ऑन, अगर जो आपको बता दे कि नेक्स्ट वीक संडे को, जी हाँ, मदर्स डे है ऑन द 10th ऑफ मई, तो ऐसे में अभी तक आपने मम के लिए गिफ्ट नहीं लिए है, आपके लिए ये वीकेंड है, अभी से आप ले सकते हैं, मम के लिए कुछ तैयारियां कर सकते हैं. इसके साथ में हम पर आपके लिए ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, मौके हैं जहां पर अपने मम के लिए आप शानदार प्राइजेस जीत सकते हैं. तो लगे हाथ आपको ये भी बता दे कि जब आप हमारे फेसबुक पेज पर जाते हैं, हम 104.2 FM के फेसबुक पेज पर, यहाँ पर मदर्स डे का जो पिंड पोस्ट है, यहाँ पर आप अपने मम के लिए एक वाउचर क्रिएट कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड वाउचर, और इसे आप किसी एक ऐप को इस्तेमाल करते हुए, जैसे कैनवा हुआ, उसको इस्तेमाल करते हुए आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने मम के लिए. और उस पोस्ट के नीचे कमेंट में आप सिर्फ मम के लिए जो वाउचर आपने तैयार किया है वही पोस्ट करना है. उतना करते ही आपके नाम को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा, जहां पर ड्रॉ होगा फ्राइडे 8 मई को ड्राइव शो पर. और अगर जो आपका नाम ड्रॉ हुआ, आपके हाथ $200 इनाम लग सकते हैं. जबकि मैं इस पोस्ट को चेकआउट कर रहा था तो सिर्फ अभी तक कुछ 17-18 लोगों ने ही भाग लिया है. आपके पास में मौका है, इनाम शानदार है $200 का, और हु नोस क्या शायद आप अपने मम के लिए ये इनाम जीत सकते हैं। और अगर जो आप ये नहीं करना चाहते तो ऑन एयर भी हम आपको मौके दे रहे हैं मम्स मूड स्विंग्स के अंतर्गत, जहां पर मदर्स डे स्पेशल ऑन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके लिए एक कॉन्टेस्ट लेकर आ रहे हैं लाइव ऑन एयर।

टाइम जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सिचुएशन देते हैं, सर्कमस्टांसेस देते हैं, बेस्ड ऑन विच आपको सिर्फ कॉल करना होता है, और कॉल करके आपको ये बताना होगा आपकी मम उस सर्कमस्टांसेस को लेकर चिल करेंगी या फिर किल करेंगी। ये सभी कुछ मौका आपके पास में रहेगा। ये जो आज के लिए मम्स मूड स्विंग्स है, ये अगले आवर पर यानी कि 12 बजे के बाद में आपके लिए रेडियो पब में हमारे साथी लेकर आएंगे और उसमें आप भाग ले सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट प्राइज है $300, सेकंड प्राइज है $200 और थर्ड प्राइज है $100। ये सभी कुछ आपके पास में मौका रहेगा, जबकि इसका ड्रो फ्राइडे 8 मई को ब्रेकफास्ट शो में रहेगा। तो इन सभी बातों के साथ में, जबकि जावेद अली के बारे में बात की है, साथ में मदर्स डे प्रमोशंस के बारे में बात की है, तो क्यों ना ऐसा करें कि जावेद अली की आवाज़ में ही आपको मदर्स डे के लिए मम, जितने भी मम हैं आउट देयर, आपके लिए ये गाना सुनवा ही देते हैं, आपको खास आपको याद करते हैं।

हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी, और जबकि कुछ 20 मिनट बाकी रह गए 11 बजने में, ऐसे में जुगाड़ जंक्शन का यह प्रोग्राम है। और आपको बता दे, एक हैक जो हमारे पास में सृष्टि ने भेजा है, और इनका कहना है कि जब भी ये अपने ओवन को साफ़ करती है, ये डिश वॉशर के जो क्लीनिंग टेबलेट्स होते हैं ये इस्तेमाल करती है, यानी कि डिश वॉशर के जो टेबलेट्स होते हैं ये अपने ओवन में ये डालती है इन अ डिश, जी हाँ, डिश में डालकर, और उसमें जब हॉट वाटर ये पो करती है उसके बाद में कुछ 100 डिग्रीज टेम्परेचर के पर सेट करती है, और इससे इनका जो ओवन है बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो मैंने फिर कुछ रिसर्च भी किया है, तो ऑनलाइन ये बताता है कि ये भी एक क्लेवर हैक है। अगर जो आप अपने ओवन को आसानी से क्लीन करना चाहते हैं, तो जो डिश वॉशर का जो टेबलेट आप इस्तेमाल करते हैं ये किसी डिश में डालकर, उसमें गर्म पानी डालकर आप अपने ओवन को 100 डिग्रीज के टेम्परेचर पर सेट करके स्टार्ट करेंगे, तो काफ़ी आसानी से जो आपके जो ग्रीसी सरफेस है ये साफ़ हो जाएंगे ओवन के अंदर। तो थैंक यू सृष्टि ये शेयर करने के लिए जुगाड़ जंक्शन में।

0: Jugaad Junction on Saturday Breakfast.
1: Yo, main hoon chhota sa chhora.
0: You're listening to Avineet.
2: समय की ओर ध्यान देते हैं तो कुछ 15 मिनट बाकी है 11 बजने में और 11 पर आपके लिए लेकर आएंगे देसी बिज शाउट आउट, जहां पर आपके होम बेस्ड बिजनेसेस को प्रमोट करेंगे ऑन एयर। साथ में आपको सिर्फ ये करना होगा, आप अपने मैसेजेस अभी से 5599 पर हमारे पास में भेज सकते हैं। अगर जो घर से आप कोई बिजनेस ऑपरेट करते हैं और इसके लिए आपको कुछ प्रमोशन चाहिए तो ऑन एयर आपके लिए करेंगे 11 बजे के बाद में, लेकिन इसका जो मैसेज है ये अभी से आप हमारे पास में 5599 पर भेज सकते हैं।
0: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
3: Saturday breakfast on Hum. Driving you home. The drive show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने।
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप दिलजीत हो?
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: This Mother's Day, Michael Hill is celebrating all kinds of mums, from the new mums, the step mums, and even the pet mums. Celebrate Mother's Day with pieces she'll love forever. Make sure to visit Michael Hill online or in-store today.
8: At Bunnings, you know you're going to get the lowest prices every day, because where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
9: Bunnings Warehouse.
8: Lowest prices are just the beginning.
0: Non-stop Bollywood. Hum. Bollywood's biggest hits. Saturday breakfast mein hum aaye hain Jugaad Junction par.
2: जी हाँ, ये है जुगाड़ जंक्शन और अक्षत ने हमारे पास में मैसेज किया है। ये बताते हैं कि जबकि ये अपने सेफ्टी जूते को दिन भर पहनते हैं और 5 days a week पहनते हैं, तो अक्सर वीकेंड में ये क्या करते हैं, ड्राई टी बैग्स ये शूज़ के अंदर डालकर ओवरनाइट रख देते हैं, ताकि जितने भी ऑडर्स है, स्मेली ऑडर्स है या स्टिंक है, ये दूर हो जाए। ये तो मैंने पहले नहीं सुना था। और एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर्स, अगर जो आप चाहते हैं वैसे भी ड्राई टी बैग्स रख कर यूज़ करना, ताकि ये किसी ना किसी तरह से फ्रेश एक इसमें स्मेल रहे, ये आप ट्राई कर सकते हैं। फॉर स्टिंकी शूज़, ड्राई टी बैग्स अंदर रख कर आप ओवरनाइट इसको रख सकते हैं, ताकि इसमें एक तरीके से टी का शायद फ्रेगनेंस आएगा।

आप सुन रहे हैं हम पर, मैं हूं आपका साथी अवि, और हमारे पास में टेक्स्ट आया है 11744। आपने जाने की कोशिश की है, आपने कहा है आप हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रही थी और आपको अच्छा कर रही थी ये मालूम नहीं कि कर रहे थे लेकिन आपने जानना चाहा है कि फूड ऐप कौन सा था जिसके बारे में आप जानना चाहते थे, तो वो था टू गुड टू गो, TOOGOD, टू गुड टू गो। ये एक है जिसे ऐप है जिसे आप डाउनलोड करके इसमें आप जितने भी वैल्यू प्राइजेस है इसे आप पा सकते हैं। इसके साथ में हमारे पास में एक और एक मैसेज आया वेलिंगटन से, हमारा साथ दे रही है रोशिला, आपने याद किया है राहुल, रिहान और रियांश को, वेलिंगटन से आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, इसी तरह से हमारा साथ देते रहिएगा।

0: You're listening to Avineet.
1: मैं हूं अभी आपके साथ में. ये आखिरी आवर का जो हमारा सफ़र है ये रहेगा आपके साथ में, जबकि 12 बजे से हम चले जाएंगे, यहां से निकल जाएंगे और रेडियो पब शुरू हो जाएगा आपके लिए. लेकिन इस आवर पर आपके लिए लेकर आए हैं देसी बिज शाउट आउट. और अगर जो देखे, हमारी कोशिश यही रहती है ताकि जितने भी होम बेस्ड बिजनेसेस है आपको प्रमोट किया जाए इस आवर पर, ताकि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं ना कहीं इनको भी इन सर्विसेज की ज़रूरत होती है और ये ओनिया सुनकर आपको कॉल कर सके, इससे आपके क्लाइंटेल बढ़ सके. और कहीं ना कहीं आपके हार्डवर्क के पीछे हम चाहते हैं कि कहीं से हम आपको थोड़ा सा इनकरेजमेंट दे और थोड़ा सा एक जेंटल पुश दे आपके बिजनेस को थ्रू मार्केटिंग ओनिया विद हम, जो सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन है यहाँ पर आपके लिए, आपको प्रमोट करे अपने ही लिसनर्स के साथ में. तो चलिए, कुछ इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस ऑलरेडी आ चुके हैं. और सबसे पहला पहल, फ्री इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न्स. आपको टैक्स रिटर्न्स बनवाने हैं तो फ्री इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न्स है. और जो रेट्स है फॉर सोल ट्रेडर्स, ये कहते हैं काफ़ी चीप और वाजिब है. आपको सिर्फ कॉल करना होगा टैक्स एजेंसी को 02104987 पर. यानी कि आप सोल ट्रेडर है, बिजनेस कर रहे हो और आपको रिटर्न्स बनवाने हैं, तो चीप रेट्स के लिए आप कॉल करें 02104987 पर. यहाँ पर आपके लिए जो रिटर्न्स है ये बनाया जाएगा. इसके अलावा अगर जो आपको खुद के इंडिविजुअल रिटर्न्स बनवाने हैं तो ये आपको बिल्कुल असिस्ट करेंगे. अगर जो आपको भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो 0800004866 पर आप कॉल कर सकते हैं हमारे पास में, और आपको ओनिया लेकर इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ा सकते हैं. और इसके अलावा अगर जो आप थोड़ा सा रेडियो शाय है तो आप 5599 पर टेक्स्ट भी कर सकते हैं और आपके लिए यहां से आपके जो बिजनेस के डिटेल्स है हम अपने लिसनर्स तक ज़रूर पहुंचाएंगे. कोशिश यही हमारी रहेगी. लेकिन मार्केटिंग की जब बात होती है ना, तो किसी न किसी तरह से आपको आगे बढ़ना ही चाहिए. जब आप मेहनत करते हो, काम करते हो और इसको एक सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो जब मौका मिलता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है इसके बारे में प्रचार करने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए, तो पीछे नहीं हटना चाहिए भाई. जो दिखता है वही बिकता है.

0: to Avineet.
1: जी हाँ, मैं हूँ अभी आपके साथ में और ये है देसी बिज शाउट आउट, जहाँ पर लोकल बिजनेसेस को हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं ताकि आप अपने बिजनेस को हमारे साथ में हम पर प्रमोट कर सके। तो एक और एक मैसेज आया है अमित की ओर से। अमित है सोल ट्रेडर आरडी प्लम्बिंग लिमिटेड के और ये प्लम्बिंग वर्क्स करते हैं। अगर जो आपको किसी तरह से किसी भी तरह की प्लम्बिंग स्कोप आपको घर पर करानी है तो अमित को 02725789905 पर कॉल कर सकते हैं। याद रहे अमित का नंबर 02725789905 फॉर ऑल योर प्लम्बिंग वर्क्स। और इसके साथ में आपको बता दें, अगर जो आपके पास में कोई फ्लैट है टू लेट करने के लिए जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं, या फिर अगर जो कोई गाड़ी बेच रहे हैं इसके बारे में आप बताना चाहते हैं, तो अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स और डिटेल्स अन्य डिटेल्स हमारे पास में 5599 पर आप भेज सकते हैं। या फिर आप घर से टेलरिंग करते हो, या फिर टिफिन सर्विसेज करते हो, घर से केटरिंग वगैरह करते हो, ये सभी कुछ के बारे में आप हमारे पास में बता सकते हैं लिखकर 5599 पर, या फिर 0800004866 पर आप कॉल करके हमें ऑन एयर हमसे बातें कर सकते हो ताकि लोग आपको सुन सके और आपके बिजनेस के बारे में और भी जान सके। तो ये सभी कुछ आपके साथ में है फॉर द नेक्स्ट आवर। जी हाँ, कुछ 12 बजे तक ये कारवा चलता रहेगा, तो आपके पास में मौका है। अभी से ही आप भेजते रहे, टेक्स्ट करते रहे, या फिर हमें कॉल भी करते रहे 0800004866 पर। अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको शायद ऐसे फिर नहीं मिलेगी। हम पर यह मौका हम आपको दे रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं आपके जो हार्डवर्क है इसमें चार चांद लग सके।

0: हम पर ये है देसी बीज शाउट आउट और मैं हूँ अभी आपके साथ में 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। एक और एक मैसेज आया है देसी बीज शाउट आउट में जहाँ पर लोकल बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं। नव ने एक मैसेज भेजा है हमारे पास में और कहते हैं इनके पास में मैंग्री ईस्ट में डे क्या है जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल सूटेबल है और अवेलेबल है। 30 आवर्स फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं मंडे टू फ्राइडे। अगर जो आप रजिस्टर होना चाहते हैं 02977928 06 पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर इनके सेंटर आप विजिट कर सकते हैं द लेनिंग ग्रोव एजुकेयर सेंटर जो सिचुएटेड है 48 बकलिन रोड मैंग्री ईस्ट में। याद रहे नव जो डेकिया चलाते हैं और यहाँ पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं द लेनिंग ग्रोव एजुकेयर सेंटर 48 बकलिन रोड मैंग्री ईस्ट। 30 आवर्स फ्री है और जानकारी के लिए 02977928 06 पर आप कॉल कर सकते हैं। आप भी घर से कुछ चलाते हैं सर्विसेज बिजनेस वगैरह तो इसके बारे में आप और भी इंफॉर्मेशन फैलाना चाहते हैं प्रमोट करना चाहते हैं तो 5599 पर आप इसी तरह से मैसेज कीजिए या फिर 0800-004-866 पर आप कॉल भी कर सकते हैं।
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम

0: चाहते हो या ब्रीज, मोर, एज, रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी. बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड. कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स.
1: इट्स 10 AM. And you forgot about dinner at yours tonight. Your fridge is empty. Your place is a mess after watching last night's game. And you're still painted the same blue as your team. No time to do the shop? Get what you need with New World Online Same Day Click and Collect. T's and C's and exclusions apply. See newworld.co.nz for details.
2: A legacy that built Swaraj. A story that shaped history based on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt and Abhishek Bachchan.
3: Kabhi Mughal, kabhi Adil Shahi, inhi saltanaton ki chhati rond kar Hindavi Swaraj ka sapna dekha hai humne.
2: Raja Shivaji, now showing in cinemas. Distribution partner, Real Star Entertainment. Rating TBC.
4: मेनिकाउ चैरिटेबल क्लब इन एसोसिएशन विद भक्ति सत्संग बॉयज ला रहे हैं भक्ति कीर्तन संध्या फ्राइडे 8 मई को रात 7 बजे से वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एफ पापाटोईटोई में जिसमें कलाकार रहेंगे फिजी के नितिन निलेश प्रकाश और न्यूजीलैंड के दवेन नाथ दो पहुंचे हुए कलाकारों को एक साथ देखने का अनोखा मौका टिकट्स सिर्फ $20 है तैयार हो जाइए भक्ति कीर्तन संध्या के लिए फ्राइडे 8 मई को रात 7 बजे से वैदिक सेंटर पापाटोईटोई में
5: With the Genesis app, LPG delivery feels easy. Switch to Genesis LPG and Power to get $15 credit per bottle delivered, plus 50 free Power Shout hours. Eligibility criteria and terms apply. Genesis, with you, for you.
6: गाड़ी चलती रहे, टेंशन बिल्कुल

0: Totoy plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: विंटर आ रहा है सो नाउ इज द टाइम टू गेट योर होम रेडी. घर को वार्म रखना हो, लीक्स फिक्स करने हो या छोटे बड़े काम निपटाने हो, इंडोर या आउटसाइड, माइटर 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन हैज एवरीथिंग यू नीड. एक्सपर्ट एडवाइस, ग्रेट वैल्यू, ऑल इन वन विजिट. माइटर 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: जी हाँ, ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम। मैं हूँ अभी आपके साथ में, और ये सेगमेंट कहलाता है देसी बिज शाउट आउट, जहाँ पर होम बेस्ड बिजनेसेस को एक मौका देते हैं प्रमोशन के लिए। तो डीजे स्कूबी, आपने हमारे पास में टेक्स्ट किया है 0223656855 से। जी हाँ, 0223656855 से आपने कहा है कि आप वेडिंग साथ में बर्थडेज के लिए आप साउंड सिस्टम प्रोवाइड करते हो, साथ ही साथ में लाइट्स वगैरह सभी कुछ आप प्रोवाइड करते हो, और ओकलैंड में साथ साथ आस पास भी आप ट्रेवल करके और वीकेंड्स पे या फिर वीक नाइट्स में भी आपको फंक्शंस के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डीजे स्कूबी को। और ये अपने जितने भी साउंड सिस्टम के साथ में, लाइटिंग इक्विपमेंट के साथ में पहुंच जाते हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। आपके घर में कोई फंक्शन होने वाली है तो डीजे स्कूबी को ज़रूर 0223656855 पर आप कॉल कर सकते हैं। MC सर्विसेज भी इनके पास में अवेलेबल है। तो ये थे डीजे स्कूबी। एक और एक कुछ मैसेज आया है, बस थोड़ी देर में आपके लिए इसे भी सुनाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप भी अगर जो अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द टेक्स्ट कीजिए 5599 पर।

हम पर ये है देसी बिज शाउट आउट, मैं हूँ अभी आपके साथ में। हमारे पास में एक और एक मैसेज आया है रविकाश चंद ने, आपने मैसेज किया फॉर एनी इलेक्ट्रिकल वर्क्स और साथ में डाटा सर्विसेज के लिए आप रविकाश को कॉल कर सकते हैं ऑन 0220265339 पर। याद रहे 0220265339 पर, ये मैंगरी बेस्ड है और इलेक्ट्रिकल वर्क्स साथ में डाटा सर्विसेज के लिए आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल है। रविकाश को आप कॉल कर सकते हैं। और आपके पास में भी कोई बिजनेस है जिसके बारे में आप प्रमोशन करना चाहते हैं, शायद आप फ्रीलांस फोटोग्राफर हो, तो 5599 पर आप हमारे पास में टेक्स्ट कर सकते हैं। या फिर किसी और तरह का बिजनेस आप घर से कर रहे हो, वेजीज या फ्रूट्स आप बेच रहे हो या एनीथिंग, फ्लावर्स भी है आपके पास में उसे बेच रहे हो, तो वो भी हमारे पास में 5599 पर आप टेक्स्ट कर सकते हो।

0: ऑलराइट, मैं हूं अभी आपके साथ में और ढेर सारे टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं। एक किचनवेयर और होम डेको बिजनेस है पेनिनसुला रोड मेंगरे में। घर के लिए आपको सामान चाहिए, अपने किचन के लिए, अपने घर के लिए डेकोरेशन के लिए कुछ चाहिए, तो आपके लिए एक नाम है सोनी। आप सोनी को 02112276251 पर कॉल कर सकते हैं। मदर्स डे स्पेशल्स भी ये दे रहे हैं, तो आप सोनी को 02112276251 पर कॉल करें। यहाँ पर घर के बहुत सारे सामान है, क्वालिटी पोर्ट सेट्स है, ये सभी कुछ होम स्टाइलिश डेको, ये सभी कुछ यहां पर सोनी के पास में है। 02112276251 लोकेशन है पेनिनसुला रोड मेंगरे। इसके साथ में एक और एक मैसेज आया हमारे पास में। अवी धवन, आपने मैसेज किया है, एक नए एजेंट है जो मार्केट में आए हैं। अगर जो आपको घर अपना लिस्ट करना है तो अवी को आप कॉल कर सकते हैं। अवी आपके फ्रेंचाइज का नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये होम बेस्ड बिजनेसेस के लिए है, लेकिन जबकि आपने लिखा है कि आप नए हैं मार्केट में तो आपको प्रमोट जरूर करेंगे। तो अभी आप एक नए रियल एस्टेट एजेंट है, अगर जो आप इनको घर देना चाहते हैं बेचने के लिए तो इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 02202472424 पर। और इसके साथ में हमारे पास में एक और एक मैसेज आया है। जी हाँ, अनित ने आपने मैसेज किया है। आप जितने भी आपकी स्पेशलिटी है, आप स्पेशलाइज करते हैं जितने भी ब्लॉक ड्रेन्स है उनको अनब्लॉक करने के लिए। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी काम है भैया, क्योंकि ब्लॉक ड्रेन्स के कारण काफ़ी समय फ्लडिंग भी हो जाती है, सरफेस फ्लडिंग हो जाती है, कंपाउंड में पानी भर जाते हैं। तो इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं अनित को ऑन 0800-233-237 पर। अनित 0800-233-237 पर आप कॉल कर सकते हैं इनकी सेवाओं के लिए। इसके साथ साथ अकाउंटिंग सर्विसेज, पर्सनल इनकम आपको लॉन्च करना है, GST बनाने हैं या फिर कंपनी का टैक्स, आप कॉल करें एलविन महाराज को ऑन 09232-6881 पर। जी हाँ, एलविन को 09232-6881 पर। ये पोकिनो में बेस्ड है और आपके जितने भी अकाउंटिंग समस्या है, पर्सनल इनकम, GST, कंपनी टैक्स, एलविन इसको सॉल्व कर सकते हैं आपके लिए 09232-6881 पर। और भी कुछ मैसेजेस है, बस थोड़ी देर में देखेंगे। 12 तक समय है लेकिन 12 बजे से पहले इसको रैप अप करना पड़ेगा। और भी कुछ मैसेजेस आपको सुनवाएंगे थोड़ी देर में। देसी बिज शाउट आउट ऑन सैटरडे ब्रेकफास्ट।
1: ब्रो, लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा। और ये कॉफी ल्यूक वार्म, टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा। प्लीज सर, तो क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तो बीच के लिए बनाए, तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
2: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
3: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास, हर बार क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 May तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर।
4: Fall in love with your home again with an ANZ Reno loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility, lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
5: Attention New Zealand, it's Lotto NZ's biggest ever Mother's Day. Treat your mum to a triple dip and she could win one of 100 extra prizes of $30,000. Get Mother's Day sorted at your local Lotto NZ store. Prizes drawn May 16th, T's and C's apply.
6: Zabardast hits.
7: Shuru ho jaye to rukte nahi.
6: Playing Bollywood's biggest hits.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: जी हाँ, हम पर रवि का साथ है और देसी बीज शाउट आउट है। ये जल से मैसेजेस की ओर देख लेते हैं। चंद्रस वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन, जितने भी आपके फेंसिंग और गेट जॉब्स के आपको रिक्वायरमेंट है, आप इसके लिए विमलेश को कॉल कर सकते हैं 02230411104। याद रहे, चंद्रस वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन, जितने भी फेंसिंग और गेट के लिए आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 02230411104 पर। इसके साथ साथ एक और एक प्यारा सा मैसेज आया था, ये पढ़ने में मुझे बड़ा मजा आएगा क्योंकि इसके लिए ही हम बने हैं, ये सेगमेंट बना है। सेलिंग फिजी बेले एंड पान प्लांट्स, यानी कि आपको पान के पत्ते चाहिए या फिर फिजी बेले चाहिए, आपको मनीरवा ही जाना है। आप अरविना को 02118243711 पर कॉल कर सकते हैं। याद रहे, फिजी बेले एंड फिश, इसका जो सूप है ना, ये अलग मज़ा ही देता है। तो इन फिजी बेले पत्तों के लिए, साथ में पान के पत्तों के लिए, आप अरविना को 02118243711 पर कॉल करें। और भी कुछ मैसेजेस है, बस थोड़ी देर तक और समय है और जितना पढ़ सकेंगे पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए प्रमोट करेंगे इस आवा पर।

जी हाँ, ये है देसी बिज शाउट आउट, और शिव को आप कॉल कर सकते हैं जितने भी डेकिंग, फेंसिंग, बाथरूम अपग्रेड, टाइलिंग, वाइनल, कार्पेट के लिए, पेंटिंग के लिए, या फिर घर में सिनेमा रूम भी बनाना है इसके लिए। वाव, सिनेमा रूम घर में बनाने के लिए शिव को आप 0218198872 पर कॉल कर सकते हैं। रिमेंबर शिव, 0218198872। जितना भी जनरल आपके मेंटेनेंस है, रेनोवेशन है, या फिर कुछ नया बनाने की कोशिश है, आप शिव को कॉल कर सकते हैं। इसके साथ में नम्रता है, ये बनाती है एक्रिलिक कैनवस पेंटिंग्स। जी हाँ, वाओ, ब्यूटीफुल आर्टवर्क आपके घर के लिए, ऑफिस के लिए, या फिर कैफेटेरियस के लिए। साइजेस रेंज फ्रॉम 8x10 inches, और साथ में एज बिग एज 6x8 feet। मार्वलस, काफ़ी बड़े साइजेस में भी बनाती है, और छोटे साइजेस में भी अगर जो आपको चाहिए तो नम्रता ननेरिया पेंटिंग करती है, और ये आपके कहीं ना कहीं आर्टवर्क के लिए आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑन 0210239497 पर आप इन्हें कॉल कर सकती हैं। ये पापाटोई में बेस्ड है। इसके साथ में SM पेंटिंग एंड रेनोवेशंस, शिव मनी, 0211069064 पर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। और ढेर सारे और मैसेजेस आए हैं। अगर जो आपको टी शर्ट प्रमोशन करवाना है, यानी कि अगर जो किसी का बर्थडे है, आपको मैसेजेस लिखवाना है। इसके साथ में स्पोर्ट्स वेयर के लिए आप विकास को 0272545468 पर कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ में एक और एक बिजनेस है, कीवी ऑटो साउंड एंड एसेसरीज मनीरेवा में। अगर जो आपको गाड़ी के लिए किसी भी सामान की ज़रूरत है साउंड के लिए, आप जिकी को 0212503085 पर कॉल कर सकते हैं। सो दीज वेयर द मैसेजेस फॉर टुडे। और इसके साथ में मोनिशा ने हमारे पास में मैसेज भेजा है, एक 1-bedroom यूनिट है विद ऑल यूटिलिटीज अवेलेबल फ्रॉम इन अ मंथ्स टाइम मनीरेवा में। आप मोनिशा को 0210270170 पर कॉल कर सकते हैं। याद रहे, आपको 1-bedroom यूनिट की तलाश है मनीरेवा में, तो एक महीने में ये अवेलेबल रहेगी। मोनिशा को 0210270170 पर आप कॉल कर सकते हैं। और $450 per week है, और इसके बारे में और भी बातें आप कर सकते हैं।

0: खुश रहे स्वयं।
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood's biggest hits.
3: ऑलराइट, देसी बीज शॉर्ट आउट को रैप अप करते हुए आज का लास्ट मैसेज। एक रूम अवेलेबल है माउंट रोस्किल में नियर मोटरवे कैंडन और मेडिकल फैसिलिटीज के पास में ही। यूनिका को 02747500045 पर कॉल करें और इन्फॉर्मेशन के लिए याद रहे रूम अवेलेबल है रेंट के लिए माउंट रोस्किल के पास नियर मोटरवे और कैंडन साथ में मेडिकल फैसिलिटीज के लिए आप यूनिका को 02747500045 पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ से जाने का समय हुआ, आपने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर कल आपके साथ में हो जाएंगे 12 से लेकर आएंगे जस्ट चिल। इन द मीन टाइम डू टेक केयर, फिर मुलाकात होगी। बाय।